0: 방금 문제예요. 박회사님 설명을 해봐요.
1: 아니 यहाँ तल लडेर बसिरहेर त मैले उठा ल्याएको
2: छैन
1: अनि म लगिदिइहाल्छु नि
2: म त फ्री मेरो गई होली भनेर यहाँ रिसा

0: Rice FM 90.4 MHz.
1: और कोई उम्मीद मत रखना बद्री।
2: उम्मीद पे तो ऐसी ही कहना।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: शिव दर्शन फिल्म्स प्राली सगौरव प्रस्तुत गर्दछ।